0: ने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
1: Being good with money starts with everyday habits. At Starling, we've been rounding up the best ones. Like paying in local currency on holiday. You'll often get a better exchange rate, leaving more money for the fun stuff. Woo-hoo! And not getting the cheap early flight. You'll spend what you saved on a 3 a.m. taxi. At Starling, we're set up to help you build great money habits. No fees from us when you spend overseas. So what happens in Vegas stays in budget. Join millions of Starling customers. Good with money starts here.

0: Citybond Travel, with over 50 years of turning dreams into unforgettable journeys. From flight-only bookings to tailor-made holidays, honeymoons, safaris, and escorted group tours, Citybond Travel does it all. Discover special offers to India, Dubai, the Maldives, the Caribbean, Africa, the Far East, South America, and many other destinations. Call our Citybond Travel specialists on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk. Citybond Travel. Your world, your journey, at all protected.
1: Tesco Insurance are driving down the cost of motoring with 10% off car insurance. Take out a car insurance policy before the 15th of May 2026 and you'll get 10% off with club card prices. We offer a range of cover options so you can choose the one that's right for you. Save 10% when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance. Search Tesco Car Insurance and get a quote direct today. Club card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
2: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
3: दीपक समझे थे निकला।
2: फिफ्टींथ मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
4: इमेजिन अ प्लेस वेयर यू कैन एस्केप फॉर अ डे, गेट इमर्स्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ रूम्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपर्टीज, where you can laze in luxury accommodation and kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
5: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777.
6: This is the UK's biggest Asian mix.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
2: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app.
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

9:50 on Sunrise with me, Shabnam Sahi, wrapping up this hour with this beautiful song from Special 26. यार मेरे एतबार मेरे दुनिया की हर चीज छूट जाए तुझ संग लगी न छूटे.

अब तुझसे जुदा होना नहीं तेरी एक हंसी, that's all I want. Jimmy Nautiyal on the vocals. Tuhin in East London, welcome to the show. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, हमारा नया पॉडकास्ट आपको एंटरटेन करने के लिए हाजिर है. मेक श्योर यू चेक इट आउट, द सनराइज कॉर्नर शॉप पॉडकास्ट. रैपिंग अप दिस आवर विथ खुदाया फ्रॉम द फिल्म सरफिरा, सुहित अभ्यंकर, सागर भाटिया, नीति मोहन ऑन द वोकल्स. गुड मॉर्निंग.

नया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: is the number one commercial Asian radio station in the United Kingdom. Sunrise Radio, with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's Best Dancer Season 5. Coming soon on Sony TV.
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
4: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना,
3: वसीम ज्वेलर्स।
5: hey!

0: दुश्मनों से बचाने की कोशिश कर रहे थे।
1: जब उन्हें पता चला कि वो शिव को इंडिया ले जाने से रोक नहीं सकते, उसे मार दिया।
0: तो उन्होंने हमें क्यों नहीं मारा? तुमने उसका बुलेट वाउंड चेक किया?
1: नहीं, क्यों?
2: इस कमरे में दोनों ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। फिगर आउट द वे टू वर्क टुगेदर।
3: अंजन, ट्रस्ट मी, इसको भेजने का फैसला करके यू विल नॉट रिग्रेट।
4: यू विल नॉट रिग्रेट इट। Anybody with all three actors' names? Do you see what I mean about the last person? Or not? Maybe not. You're probably going to give me all three actors' names and the movie name and everything else as well. Right, okay. Let's listen to it one more time.
0: Kuch gadbad hai. We're missing something.
1: Tum kuch zyada hi soch rahe ho, Yash. It's over.
0: Wo log sara din use bachane ki koshish kar rahe the.
1: Jab unhe pata chala ki wo Shiv ko India le jane se rok nahi sakte, use maar diya.
0: To unhone hame kyun nahi mara? Tumne uska bullet wound check kiya?
1: नहीं, क्यों?
2: इस कमरे में दोनों ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। फिगर आउट द वे टू वर्क टुगेदर।
3: अंजन, ट्रस्ट मी, इसको भेजने का फैसला करके यू विल नॉट रिग्रेट।
4: सो आसिफ फ्रॉम टैंजानिया, यू हैव द राइट आंसर। सो यू हैव गॉट ऑल थ्री, यस। आई एग्री विद यू सोनिया। व्हाट, यू कांट रिकॉग्नाइज द लास्ट पर्सन? यस, सी व्हाट आई मीन? Anjali, you have all three as well. Well done. And I think that's about it on all three actors' names. Yeah, I think that is. Okay, well, I'm going to leave it there for you right now. And if you think you know, of course, you can WhatsApp me, all right? The WhatsApp number, again, if you need it again, is 07925
5: 700272.
4: Next. Listener's choice. Which one would you like to listen to? Got this one, Chamak Chalo Chele Chabili from Rowdy Rathore. That's your option A.

नजरा भेजा किसी ने प्यार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का. It's not the right answer. मेरा जूता है जापानी, प्यार हुआ इकरार हुआ. No. Nene, Shin Swinton, you got it right. Well done.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: इवनिंग, हाउ इज योर नाइट शिफ्ट गोइंग? जस्ट अ क्विक चेक इन फ्रॉम एकॉन इंश्योरेंस, द टैक्सी स्पेशलिस्ट्स। वी हैव बीन बाय योर साइड फॉर ओवर 40 इयर्स, हेल्पिंग न्यू ड्राइवर्स एंड अ नो

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest station, radio station in the world.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: We got it at Selco.
4: If you're in the trade, you can rely on Selco Builders Warehouse for thousands of items in stock, all at trade prices. And with Click and Collect, you'll get the job done fast and for less. This month, we got a mega deal on a 20-kilo bag of Dunlop CF24 Grey Flexible Tile Adhesive, only £15. Check online for even more offers, or see them in store at your local Selco today.
3: It's where the trade goes.
4: Price ex VAT at 20%.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तू?
7: खातून कौन थी?
6: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस.
7: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
8: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो. इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई.
0: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल, टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर. वेल प्लान्ड, कंफर्टेबल, ट्रस्टेड, दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk. This is Sunrise, the UK's biggest. Asian.